और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 17 अगस्त 2026, दिन सोमवार, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी, 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्योदय हुआ है 5:51 पर और सूर्यास्त होगा 7:03 पर। और मेरे प्यारे श्रोताओं, आज ही के दिन हमारे देश में नाग पंचमी भी मनाई जा रही है।

इंसान को जब थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाता है तो वो अभिमानी प्रभु परमात्मा के भी विपरीत बोलने लगता है और ऐसे घिनौने कार्य करता है जिन्हें देखकर देवता भी रूप

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर शीतल कुमार के साथ की गई भेंट वार्ता सुनिए। आपकी बातचीत का विषय है माइग्रेन, कारण और उपचार।
2: डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
3: थैंक यू
2: डॉक्टर साहब। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपसे, एक बीमारी का नाम हमने सुना है माइग्रेन, ये क्या बीमारी है?
3: माइग्रेन हमारे सिर से संबंधित एक बीमारी है जिसमें जनरली हमें सिर का दर्द आमतौर पर दिखाई पड़ता है और इसका जो ट्रेंड है आने का किसी भी पेशेंट में वो रिकरेंट होता है, जिसको हम आम भाषा में कहेंगे बार बार आता है और एपिसोड्स में आता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ समय के बाद ये रिपीट होता है, बार बार आता है
2: जी।
3: तो जिसमें आमतौर पर सिर दर्द के साथ हमें उल्टी का मन या फिर उल्टी का आ ही जाना या इसमें कभी कभी लूज मोशन जिसको हम डायरिया कहते हैं वो भी इंड्यूस होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें तेज़ सिर का दर्द और जो कि हमारे आधे सिर में ज़्यादातर पाया जाता है उसके साथ साथ उल्टी का मन होना और उल्टी का कभी कभी आ जाना ही पाया जाता है।
2: ये तो एक तो डॉक्टर साहब सिर दर्द आम जिसे हम कहते हैं, कभी हर इंसान को इस तरह की बीमारी
3: कभी हो जाती है।
2: ये कुछ अलग है माइग्रेन?
3: माइग्रेन अलग अपने इसी कैरेक्टर के साथ है कि ये बार बार आती है और सबसे पहली बात यह है कि इसमें हम इसको कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को इस दर्द के आने से पहले किसी हद तक मालूम पड़ जाता है, जिसको हम ऑरा कहते हैं या प्रोड्रोम हमारी एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, तो पेशेंट को इसका आभास पहले ही हो जाता है कि कुछ गलत मेरे शरीर के साथ हो रहा है और कुछ गड़बड़ होने वाली है। आमतौर पर आप ये कह सकते हैं अमूमन 70-80% लोगों के बीच में पेशेंट को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और जनरली 1-2 दिन के बाद उसको सिर का दर्द शुरू हो जाता है। इस तरह से ये बाकी सिर से अलग है, आपको कई सारे ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो इसको इंड्यूस करते हैं, बार बार इसको लाते हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना, तेज़ मिर्च मसाले खा लेना, उससे ये एकदम से आता
2: अच्छा,
3: है।
2: इसके रूट्स कहाँ पे हैं, अगर हम इसके रूट्स जानना चाहेंगे आपसे?
3: रूट्स जानना चाहेंगे तो इतना क्लियर नहीं है साइंटिफिकली, लेकिन जनरली क्या है कि हेरिडिटरी चलता है, अनुवांशिकी के ऊपर। जैसे कि जिनके पेरेंट्स को अगर ये बीमारी है तो बच्चों में जनरली आती है, आमतौर पे आ जाती है, नहीं भी आए कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन जनरली आ जाती है। तो मेन कॉज तो उसका यही आ जाता है कि हेरिडिटरी आता है। लेकिन अगर शरीर में देखें तो इसको 2 थ्योरीज में बांटा गया है। पहली हमारी वैस्कुलर थ्योरी जिसको हम कहते हैं और दूसरी न्यूरोलॉजिक है। और आम भाषा में वैस्कुलर कहेंगे जो हमारे रक्तवाहिनी है जिसमें हमारा खून दौड़ता है, कुछ उसके कारण है और कुछ हमारी जो नाड़ियाँ हैं जिससे हमारा सारा शरीर चलता है, ब्रेन्स के साथ हमारे मस्तिष्क के साथ, तो उसके थ्रू भी ये आता है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, महिलाओं में अक्सर इस तरह की बीमारी माइग्रेन?
3: जी बिल्कुल, आमतौर पर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। तकरीबन 70-80% महिलाएं इससे ग्रसित होती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट कारण उसका ये माना जाता है कि आमतौर पर औरतों के ऊपर हमारे देश में बहुत ज्यादा वर्कलोड है। देखने में हम आम आदमी कह देता है कि घर में काम ही क्या होता है, लेकिन घर में अगर आप देखें तो बहुत काम होते हैं। अगर एक आम आदमी घर बिठा कर उसको औरत का काम दे दिया जाए तो शाम तक वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। और बड़ी सारी चीज़ें हैं, औरत अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है, डिप्रेशन एक साथ साथ एक वर्ड चलता है औरतों के साथ, पैरेलल समानांतर चलता है, क्योंकि सास का प्रेशर होता है, देवर भाभियाँ हैं और चीज़ें हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो एक डिप्रेशन या एक अवसाद जिसको कहते हैं मानसिक तौर पर, औरत उससे ग्रसित रहती है। और ट्रिगर फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर जो माइग्रेन का है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन से हमारे इसमें ब्रेन में ऐसी चेंजेस आती हैं, न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं सडनली, फिर एकदम से वो किल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण औरतों में ज्यादा पाया जाता है।
2: यानी आपका कहना है कि डिप्रेशन से
3: डिप्रेशन ही इसका
2: माइग्रेन बीमारी का
3: एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है, डिप्रेशन ही इसको कॉज कराएगा और स्टार्ट हमेशा डिप्रेशन से होगा, वो स्प्रेड करेगी बॉडी में, डिप्रेशन के बाद ही ये चीजें जनरली आती हैं।
2: एक्यूट में होता है ये माइग्रेन जबरदस्त?
3: एग्जैक्टली, ये बहुत तेज दर्द होता है। पेशेंट का हम जब डायग्नोसिस बनाते हैं तो दर्द के कैरेक्टर से ही बनाते हैं और आमतौर पर दर्द खत्म होने के बाद ही हम इसका डायग्नोसिस बना पाते हैं कि ये माइग्रेन था, क्योंकि आमतौर पर इस दर्द के बाद पेशेंट इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि उस पर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बचती, दर्द चला जाता है। लेकिन एक दो दिन वो इतना परेशान रहता है, उसकी दर्द की वो हालत कर दी होती है बॉडी की कि वो पूरा ड्रेन्ड होता है।
2: बच्चों में भी क्या इस तरह की बीमारी पाई जाती है?
3: बच्चों से अगर हम ये कहें तो हम लेट चाइल्डहुड यानी कि बच्चों की देर वाली अवस्था, जैसे 12-13 साल की उम्र में ही ये बीमारी आमतौर पर शुरू हो जाती है, लेट 20s अर्ली 30s इसमें ज़्यादा जाती है। फिर एक बार जो हो जाती है तो वो ज़िंदगी भर तो छोड़ती नहीं है, उसे सिर्फ प्रिवेंशन ही रह सकता है और इसका ट्रीटमेंट तो है नहीं कि एक बार ठीक कर दिया दोबारा नहीं आएगा, वो रिकरेंट आएगा, इसीलिए माइग्रेन है।
2: जी जी,
3: तो बच्चों में जरूर पाई जाती है लेकिन 12-14 साल की उम्र के बाद, उससे पहले आमतौर पर नहीं मिलती।
2: यानी आप ये मानते हैं कि डिप्रेशन से माइग्रेन की बीमारी?
3: बिल्कुल सही बात है, डिप्रेशन ही इसको कॉज कराती है, हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालती है जिसके बाद ये अपने पूरी तरह से बाहर आता है बीमारी। तो स्टार्ट उसका डिप्रेशन से ही।
2: इसमें कोई सर्जिकल प्रॉब्लम होती है या?
3: जी नहीं, इसमें सर्जिकल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही सर्जरी की वजह से होता है। हाँ, अगर किसी का ब्रेन सर्जरी करते समय ट्राइजेमिनल नर्व एक होती है हमारी बॉडी में, उसको अगर छेड़ दिया जाए तो पॉसिबल है उससे वो ट्रिगर हो सकता है कभी ना कभी।
2: अच्छा, इस बीमारी से कितनी परसेंटेज ग्रस्त है?
3: बहुत कम, लेकिन आजकल के हिसाब से देखा जाए तो बढ़ रही है, पहले इतना नहीं था, लेकिन आजकल की बहुत भागम भाग जिंदगी, तनाव इतना ज्यादा है, काम का लोड ज्यादा है, तो हर दिन ये बढ़ती जा रही है और प्रेवलेंस इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्लियर।
2: डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करेंगे, आपकी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
3: देखिए, मैं तो किशोर के गानों का ही फैन हूँ, तो अपनी पसंद से किशोर का कोई गाना सुना सकते हैं या फिर सफर फिल्म का गीत सुनवा दीजिए। सफर के सारे गाने अच्छे हैं।
2: आपकी पसंद का गीत हम सफर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।
3: थैंक यू। है ये कैसा सफर।

0: डॉक्टर शीतल कुमार आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बात करेंगे आपसे माइग्रेन के बारे में, हम बात कर रहे हैं अब अगर हम लक्षण की बात करें, अभी आपने बताया कि एक पेशेंट को पहले ही पता चलता है कि मुझे इस तरह की बीमारी होने वाली है, इसके लक्षण क्या है?
1: देखिए, लक्षणों को हम थ्योरेटिकली किताबी भाषा से तो 3-4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उसके 4 स्टेजेस हम मानते हैं, जिसको पेशेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि इसके मेरे को 4 स्टेजेस में ये बीमारी आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ने या समझने के हिसाब से उसको हम इसमें बांटते हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं प्रोड्रोम स्टेज कहते हैं, जो कि बीमारी से पहले की स्टेज होती है। फिर एक ऑरा स्टेज होती है, जिसमें पेशेंट की ब्लरिंग होती है, विजन की साफ दिखाई नहीं पड़ता है, आंखें चुंधी आती हैं, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। और सबसे जो मेन लक्षण है, तीसरा आता है इसका, सिरदर्द का, जिसको हम हेडेक कहते हैं, जो सबको पता चलता है कि अब हो गया
0: जी।
1: और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे क्लिनिकल लेवल पे डायग्नोसिस बनाने के लिए,
0: इसकी इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करते हैं?
1: इन्वेस्टिगेशन जनरली इसकी क्लिनिकल ही होती है
0: जी।
1: इसके ब्लड टेस्ट या ये सब कराने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, इसकी क्लिनिकल ही डायग्नोसिस होती है। पेशेंट की हिस्ट्री सुनकर, उसको जानकर कि कैसे शुरू हुआ, कितनी देर हो गई, कितना लंबा अटैक आया, उससे ही बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा कन्फर्मेटरी हमारा जो रहता है वो इसका पोस्टरूम, यानी कि बीमारी ख़त्म होने के बाद की स्टेज है।
0: कितने दिनों तक माइग्रेन रहता है?
1: आमतौर पे 1 या 2 दिन तक माइग्रेन रहता ही है, कई लोगों को 3-3 दिन भी चलता है। तो एक टर्म होती है, 3 दिन से ऊपर जिसका माइग्रेन कंटिन्यू कर जाता है, उसको हम स्टेटस माइग्रेनोसिस कहते हैं, कि वो कंटिन्यूसली माइग्रेन के अटैक में रहता है। तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस स्टेज, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, फुल्ली ड्रेन्ड आउट हो जाता है, एग्जॉशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आमतौर पर अगर हम इसको देखें तो 1-2 दिन तक रहता है
0: जी।
1: तो प्रोड्रोम, जो मैंने आपको बताया कि जो बीमारी के आने से पहले की स्टेज है, उसमें ये समझ लीजिए कि 4-6 दिन या हफ्ता पहले पेशेंट को कुछ ऐसे आभास होने लगते हैं कि कुछ मेरे साथ गलत है, वो सो नहीं पाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है और अपने किसी काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो वहाँ से उसको लगता है कि कुछ गलत मेरे शरीर में हो रहा है। तो सेकेंड स्टेज जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं ऑरा की, वो सब मरीजों में नहीं पाई जाती, किसी में जनरली 50-60% तक होती ही नहीं
0: जी।
1: और जिनको होती है उनको जनरली आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम होती दिखाई देती है, साफ नहीं देख पाते हैं, अदरवाइज वो ठीक देखते हैं, लेकिन इस स्टेज में वो थोड़ा सा कम देख पाते हैं।
0: ये जो माइग्रेन है, सिर के पूरे हिस्से में होता है या?
1: जी नहीं, वैसे तो सेट करेक्टर नहीं है, लेकिन आमतौर पर आपको ये सिर के आधे हिस्से ही मिलेगा, लेफ्ट हाफ में या फिर राइट हाफ में। लेकिन सिम्टम डिफर करते हैं, सेम पेशेंट में बार बार डिफरेंट सिम्टम हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। हम अगर ये कहें कि सेट पैटर्न पे इसी तरह का दर्द आएगा, ऐसा नहीं। तो ये कई बार फेस से भी शुरू होता है, मुंह से भी शुरू हो सकता है, सिर से भी शुरू हो सकता है। आमतौर पे आप इसको ये सिर के आधे ही हिस्से में मिलेगा, पूरे हिस्से में नहीं मिलेगा आपको। तो हेडेक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, उसके साथ आपको ये जो उल्टी का आना है, ये एक सबसे कॉमन फैक्टर है कि उल्टी जैसा मन करता है या उल्टी आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं से हम डायग्नोसिस बनाना शुरू कर देते हैं कि ये माइग्रेन हो सकता है। और जो पेशेंट ये बताता है कि 1-2 दिन जा चुका है, दवाई थोड़ी बहुत खा के भी नहीं जा रहा है, तो हमारा विश्वास और पक्का होता चला जाता है कि माइग्रेन की तरफ ही है
0: जी।
1: फिर भी 2-3 बार अटैक आने के बाद ही हम उसको लेबल करते हैं कि ये माइग्रेन का दर्द है। अगर पेशेंट बार बार एक ही डॉक्टर से मिलता है और बताता है कि 2 बार मुझे पहले हो चुका है, 3री बार आ गया है, 4थी बार हो गया है, तो फिर हम विश्वास से ये बात कह देते हैं कि अब ये माइग्रेन है और उसकी कुछ प्रिवेंशन है जो आदमी कर सकता है। और हेडेक के अलावा जो मैं बता रहा था आपको कि जो बाद वाली स्टेज है, पेशेंट ठीक होने के बाद इतना थकान महसूस करता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता है, वो हमें और भी ज़्यादा विश्वास दिलाती है कि जिस बीमारी से आदमी ये ग्रसित था वो माइग्रेन ही थी। और इसके अलावा लक्षण तो ज़्यादा इसमें और दिखते नहीं हैं। और ये ज़रूर है कि
0: खास आपने बताया कि डिप्रेशन
1: से शुरू होगा, और आमतौर पर डिप्रेशन शुरू होगा, पेशेंट को नहीं पता चलता है, एक आम आदमी अपने आप को डिप्रेशन में नहीं गिनता है, जबकि आज की भागम भाग वाली जिंदगी में डिप्रेशन सभी की जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है।
0: किस उम्र में ये होता है?
1: जनरली ट्वेंटीज लेडीज में ज्यादा पाया जाएगा। और एक बार किसी में ये एस्टेब्लिश हो गया किसी को माइग्रेन, तो फिर तो रिपीटेड अटैक्स आते हैं, जो माइग्रेन का कैरेक्टर है कि रिपीटेड रिकरेंट अटैक्स, बार बार आएंगे, दर्द होगी और एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न में होगी कि इतने दिन की होगी, उल्टी आएगी, कुछ काम नहीं होगा।
0: कितनी बार महीने में इस तरह की?
1: अगर हम महीने का हिसाब देखेंगे तो पेशेंट के लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों का काम इस तरह का है कि उनको भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना पड़ता है, डस्ट में जाना पड़ता है, या फिर जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होता है, ये सारे फैक्टर उसको बार बार अटैक की तरफ लेके जाएंगे। तो
0: जी,
1: आप ये समझ लीजिए कि अगर उसका प्रोफेशन ऐसा है कि कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर बहुत शोर है, तो महीने में 10 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता।
0: जी जी और शरीर के किस अंग को ये नुकसान पहुंचाता है अगर माइग्रेन हो?
1: देखिए, कोई भी बीमारी शरीर में होगी तो सारा शरीर उससे प्रॉब्लम में आ जाता है। अगर हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, हम ठीक से खा नहीं सकेंगे, पी नहीं पाएंगे, अल्टीमेटली पेशेंट का जो इफेक्ट है, पेशेंट के ऊपर माइग्रेन का फाइनल इफेक्ट है, दैट इज़ पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस, ठीक से खाना नहीं खा पाना, और फाइनली जब पेशेंट ठीक से आहार नहीं लेगा तो बॉडी ने वीक होना है और बहुत सारी बीमारियां उसको पकड़ सकती हैं। बट अदरवाइज किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को, हाथ को, पैर को, या किसी ऑर्गन को वो इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं।
0: आपने बताया कि इसका इलाज नहीं है,
1: इलाज का एक प्रॉपर तरीका नहीं है।
0: हम इस पर चर्चा करेंगे अगले हिस्से में। अभी अपनी पसंद का एक और गाना आप जरा बताइए, कौन सी फिल्म का गाना है?
1: अक्सर हमराज पिक्चर का गाना सुनता हूं मैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो।
0: जी जी, महेंद्र कपूर की आवाज
1: जी, बहुत अच्छा गाना।
0: बी आर चोपड़ा साहब की फिल्म रही है, बहुत ही शानदार फिल्म रही है
1: जी। बिल्कुल।

0: डॉक्टर शीतल कुमार हमारे साथ हैं आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अब हम इस कार्यक्रम के अगले आखिरी हिस्से में आए हैं। अगर हम इलाज की बात करें, आपने वैसे कहा कि इसमें इलाज कोई नहीं है, ऐसा क्यों?
1: इलाज की बात देखिए, ऐसा है कि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक बीमारी है, हम इससे बच सकते हैं। इलाज तो किसी को दर्द है तो दवाई से वो दर्द तो चला जाएगा, लेकिन बीमारी को हम अप्रूट या उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। तो अगर पेशेंट कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां बरते तो उसको बार बार ये बीमारी नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंटली, जनरली लोग क्या करते हैं, दर्द होने पर एक पहला काम होता है पैरासिटामोल की गोली या एक एस्पिरिन की गोली एक ली जाती है। उसमें कुछ गलत नहीं,
0: घरेलू नुस्खा,
1: घरेलू नुस्खा है, सबको पता है, ओवर द काउंटर मिलता है। पेशेंट जाता है मेडिकल स्टोर पे, दो गोली ले आता है, खा लेता है। आम दर्द,
0: वैसे भी ये हम यहाँ पे अपने सुनने वालों को ये कहना चाहेंगे कि खुद आप दवाई कोई मत इस्तेमाल करें।
1: जी, सेल्फ मेडिकेशन अच्छा नहीं होता है, लेकिन जिसका केस एस्टेब्लिश हो गया है कि माइग्रेन है, तो उसको कुछ दवाइयाँ अपने पास रखनी पड़ती हैं कि सडनली एक भी बीमारी आती है या दर्द आती है तो उसको एकदम से कुछ इलाज तो चाहिए। लेकिन माइल्ड अटैक में या माइनर अटैक्स में हम ये समझते हैं कि एस्पिरिन या पीसीएम खाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई खा सकता है। प्रॉब्लम ये आती है, पेशेंट को डोज का पता नहीं। ले तो सकता है, पीसीएम ले आएगा, बच्चा 12 साल का है, पीसीएम कितना खिलाना है ये नहीं पता है। अपने हिसाब से वो बच्चे को सोचेगा कि 12 साल का है, आधी गोली दे देते हैं या उसका एक क्वार्टर दे देते हैं। तो हायर मेडिकेशन या लो डोसेज में एक मेडिकेशन हमेशा नुकसान करेगी, एक प्रॉपर डोज में नहीं आएगी। तो इसलिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक माइनर अटैक है पीसीएम का, उसको पता है, तो वो ले सकता है और उससे चला भी जाएगा। एस्पिरिन की गोली से, पैरासिटामोल की गोली से वो दर्द चला जाता है। प्रॉब्लम आती है जब अटैक थोड़ा मॉडरेट या सीवियर होता है, वहाँ फिर ये सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। तो प्रोफिलेक्सिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका लाइफस्टाइल। आपको बचना है लंबे सफ़र से, पहाड़ी सफ़र से, भीड़ से, तेज़ मसाले वाले खाने से, और जैसे बहुत शोर वाला इलाका है उससे, धुएं से, पॉल्यूशन से, इन चीज़ों से जितना बच सकेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कोई त्यौहार का टाइम आ रहा है तो हरिद्वार सब लोग दौड़ते हैं कि आज वहाँ नहाने जाना है, कुंभ का मेला है, कुछ है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो धार्मिक आस्था होती है, जाना होता है। तो जो माइग्रेन का पेशेंट है, जिसको पता है कि मुझे ऐसा होता है, तो उसको उस चीज़ में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पहुँचने के लिए भी भीड़ वाली बस में ठसाठस भर के जाएगा और उसको जब पहुँचने से पहले उसको माइग्रेन का अटैक डेफिनेटली आ जाएगा।
0: जी,
1: वहाँ जाएगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी, बहुत कंजेशन होगी, वहाँ परेशान रहेगा। तो ऐसे में इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए।
0: आपने बताया डॉक्टर साहब कि खाने पीने की चीज़ों को एहतियात,
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि तेज़ मसाला है, तेज आपको गैस्ट्राइटिस कराएगा और जब भी वॉमिटिंग बाद में इंड्यूस होगी उसमें माइग्रेन को हेल्प करेगा, इसलिए उससे बचना चाहिए। आजकल फास्ट फूड का चलन हो गया है, हर आदमी बर्गर के पीछे दौड़ता है, हॉट डॉग के पीछे दौड़ता है, छोटे छोटे गाँव में भी हॉट डॉग की रेडियाँ आपको देखने को मिलेंगी आजकल। सबसे पहली बात, हाइजीनिक नहीं होता है, साफ़ नहीं होता है, पहली बीमारी वहीं से। अगर माइग्रेन नहीं आएगी तो कोई पेट की बीमारी आएगी। तो मैं माफ़ी चाहूँगा उन सब लोगों से जो हॉट डॉग बेचते हैं, पर अगर वो सफाई से बेचें तो हमें इससे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर उसको ठीक से ढक के रखें, बरसात है, चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं, जो चीज़ें ख़राब हैं उनको फेंक दें, नए सिरे से ले लें।
0: डॉक्टर साहब, परमानेंट सोल्यूशन इस डिजीज़ का
1: यही है सिर्फ सोल्यूशन, क्योंकि आपको मैंने बताया कि प्रोड्रोम स्टेज है, पेशेंट को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। और जिसका एक बार ये डिज़ीज़ इस्टेब्लिश हो गया, डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया कि ये माइग्रेन आपको है, उस पेशेंट को हमेशा अपने कैरी बैग में या अपनी सबसे नज़दीक वाली अप्रोच वाली जगह पे एक मेडिसिन का स्ट्रिप रखना चाहिए कि जो मैं इमरजेंसी में खा सकूं। दूसरी बात, अटैक आने से पहले अगर मेडिसिन ले ली जाती है तो उससे क्या होता है कि अटैक अपने सीवियर फॉर्म में नहीं आता है, वो एक आध दिन में सबसाइड कर जाएगा और दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। तो अगर पेशेंट उस समय लापरवाही करेगा कि सिर में दर्द ही है, चला जाएगा, कल तक चला जाएगा, जिसको पता नहीं है माइग्रेन वो तो ऐसा ही करेगा, लेकिन जिसको पता है कि मुझे माइग्रेन है उसको कभी इससे वो नहीं करना, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।
0: अगर हम ये मान के चलते हैं कि महिलाओं में इस तरह की बीमारी ज्यादा होती है, तो महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: महिलाएं हमेशा अपने साथ एक पर्स कैरी करती हैं, हैंड बैग कैरी करती हैं,
0: वो तो ठीक है, लेकिन और क्या परहेज?
1: परहेज यही है कि सबसे बड़ी बात है रिलैक्सेशन, एक बहुत बड़ी बात है,
0: और तनाव नहीं,
1: तनाव मुक्त रहना चाहिए। भजन भक्ति तो औरतें करती ही हैं, उससे बहुत सारी मानसिक शांति मिलती है। आजकल योगा का चलन हो गया है, तो योगा से भी हम इसको रोक सकते हैं। और अगर किसी को मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, तो एक सिंपल सा फिनोमेना है कि पैरासिटामोल की टैबलेट और उसके साथ एंटीमेटिक हम कहते हैं जो उल्टी रोकने वाले ड्रग्स हैं, जैसे पेरिनॉर्मल लोग लेते हैं, उसको कॉम्बिनेशन में लें तो बहुत अच्छा काम करती हैं। और सिविर अटैक में हम एर्गॉट के डेरिवेटिव्स लेते हैं जो एक वैसोग्रेन जनरली लोग टैबलेट ले लेते हैं, उसमें होता है, लेकिन किसी को उल्टी का मन है तो वैसोग्रेन को अवॉइड करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि हमें तनाव मुक्त रहने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सुबह की सैर है, योगा है, ये सब चीज़ें आदमी को तनाव से मुक्त करती हैं और माइग्रेन आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे।
0: डॉक्टर शीतल कुमार, आप हमारे साथ बने रहे इस आज के कार्यक्रम में। माइग्रेन पे हमने बात की, विस्तारपूर्वक बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पसंद का चलते चलते गीत बताइए, कौन सा हम आपको सुनवाएं?
1: चलिए, अब चलने का समय हो गया है तो एक तेरे घर के सामने एक फिल्म है, उसका गाना है देखो रूठा ना करो, जो मैं अक्सर अपनी वाइफ के लिए गाता हूँ।
0: जी जी जी,
1: वो आप रेडियो पे सुनवा दीजिए।
0: चलिए, आज भी हम उन्हीं के लिए ये डेडिकेट करें आपकी तरफ से।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीतल कुमार, आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में। माइग्रेन पे आपने तफसीलन जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर शीतल कुमार के साथ की गई भेंटवार्ता आप सुन रहे थे। आपकी बातचीत का विषय रहा माइग्रेन, कारण और उपचार। आपके साथ बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: किस कारण जोगन जोग लिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो दस्ता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोर्टल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आवाज की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो इतस्ता पर, और जैसा कि हम आपके लिए हर बार लघु कथाएं लेकर आते हैं, और इस बार की जो लघु कथा है वो लघु कथा श्री भारत गोस्वामी द्वारा रचित है। हम समाज के बिना जी नहीं सकते, हमसे समाज है और समाज से हम हैं। एक दूसरे से हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि उस कसाई और उसकी पत्नी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान हो। उत्सुकतावश देखने पर उसने पाया कि अरे, उसमें तो एक चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर उसने पिछवाड़े में जाकर कबूतर को ये बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। निराश चूहा ये बात मुर्गे को बताने गया। मुर्गे ने एक भी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, जा भाई, ये मेरी समस्या नहीं है। हताश चूहे ने बाड़े में जाकर बकरे को ये बात बताई, और बकरा हंसते हंसते लोट पोट होने लगा। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज हुई, जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया। अंधेरे में उसकी पूंछ को चूहा समझकर उस कसाई की पत्नी ने उसे निकाला और सांप ने उसे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर उस व्यक्ति ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने की सलाह दी। कबूतर अब पतीले में उबल रहा था। खबर सुनकर उस कसाई के कई रिश्तेदार मिलने आ पहुंचे, जिनके भोजन प्रबंध हेतु अगले दिन उसी मुर्गे को काटा गया। कुछ दिनों बाद उस कसाई की पत्नी सही हो गई, तो खुशी में उस व्यक्ति ने अपने शुभ चिंतकों के लिए एक दावत रखी। अब दावत रखी तो बकरे को काटा गया। चूहा अब दूर जा चुका था, बहुत दूर। अगली बार कोई आपको अपनी समस्या बताए और आपको लगे कि मेरी समस्या नहीं है, तो रुकिए और दोबारा सोचिए। समाज का एक अंग, एक तबका, एक नागरिक अगर खतरे में है तो पूरा समाज, पूरा देश खतरे में है। अपने अपने दायरे से बाहर निकलिए, स्वयं तक सीमित मत रहिए, सामाजिक बनिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आपको मेरा आदाब। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत बन गई। मैंने तुम्हारे चेहरे से इसे चुरा लिया है। यहां इन घने अब्र आलूद मौसमों में तुम छिप जाते हो और कोसीकजा का दामन थाम लेते हो। अक्सर बादल के टुकड़े दयारों में बदल जाते हैं और अनदेखी बस्तियों को राहत बख्शते हो, हरारत से महफूज रखते हो। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत क्यों बन गई।

मौसम आए मौसम जाए, पर सदियों से तुम न आए। तुम आकाश थे रोशनियों के, सफर में हम सफर थे मील के पत्थर थे। इन प्यार की सरहदों के निगहबां थे, मेरी हर कोशिश की शुरुआत थी, मेरी हर सुबह की पुकार थी। कितने ही मौसम आए, कितने ही मौसम जाए, क्या कभी तुम

था पानी का बुलबुला जो बनता रहा, मिटता रहा। कभी हथेली पर ठहरा नहीं, कभी जमीन पर उरका नहीं, कभी बादल बना तो कभी शबनमी बूंद। मैंने उसे तैरते पानियों में बनते मिटते बिखरते देखा, इन खामोशियों में फना होते हुए देखा। शायद वो गुजरे कल का तस्वीर था जो कभी लौटता नहीं, जो कभी लौटता नहीं।

मैंने सुना है यहीं से गुजरता था वो जो कभी मेरे छत पे आकर तारों को गिनता था, चांद की परछाई से लिपटता था, नदामत भरी आंखों से मेरी बेबसी, मेरी लाचारगी को अपने पास महफूज रखने की कोशिश में हमेशा से ही मसरूफ, अपने दुपट्टे से अपने ही चेहरे को ढकना, ये उनकी फितरत में शामिल है। दिल के ठहरे हुए पानी में पत्थर ना फेंको, चांद का अक्स बनाया है, बिखर जाएगा।

क्यों आकर रुक गई मेरे आंगन में, एक परछाई क्यों मुझे छूने को है बेकरार बेताब। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक एहसास आज भी है पलता मेरे वजूद, मेरे जीवन के हर हिस्से में, कि कोई तो है, कि कोई तो है जो अभी भी रिश्तों को बरकरार बनाए रखे हुए हैं।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब दीजिए अपने दोस्त रमेश मराठा को आज के इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्ते।

0: आपने ट्यून इन किया है रेडियो इतस्ता, हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका मस्ती वाला रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। लेके आया हूं प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादों का एक नया एपिसोड। इस शो में मेरा साथ देंगे आरजे शिवानी।
1: नमस्कार, आप सभी सुनने वालों का स्वागत कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादों में। मैं आरजे शिवानी इस कार्यक्रम के सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: आज के इस शो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऐसे जोड़ी की जिन्होंने हमारे दिलों में खास जगह बनाई है अपने दमदार संगीत से। जानेंगे उनके जिंदगी के बारे में और हम सुनाएंगे उनके बेहतरीन गाने प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादों के सफर में। आज हम बात करेंगे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने अपने वरिष्ठ संगीतकारों की खिदमत की, उनका आशीर्वाद पाया, उन्हीं को टक्कर दी और फिर उन्हें पीछे छोड़ते हुए सभी स्थापित और ताकतवर फिल्म निर्माताओं को अपना मुरीद बना लिया। बॉबी, हीरो, सरगम, एक दूजे के लिए जैसी प्रेम कहानियों से इस जोड़ी का जादू युवाओं के सिर चढ़कर बोला। लक्ष्मीकांत लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया था, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। यह अलग बात थी कि लक्ष्मीकांत का बचपन विले पार्ले मुंबई का एक उपनगर की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया था। लक्ष्मी और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मी मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 सालों तक हुसैन अली से फिर बालमुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन का प्रशिक्षण लिया। बाद में हिंदी फिल्म की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुसनलाल भगत राम के हुसनलाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे। इस प्रोग्राम में हम इनके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। आइए सुनते हैं इनका एक बहुत ही संगीत भरा गाना फिल्म एक दूजे के लिए से, 16 बरस की भाली उम्र।

0: 40 और 50 के दशक में हुसैनलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायकों ने भी उनकी शागिर्दी की। इस जोड़ी के चांद 1944 में बनाए एक दिल के टुकड़े हजार हुए गाने का कमाल यह था कि इसके बाद दर्द भरे गानों का दौर ही शुरू हो गया था। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीत कार्यक्रम के दौरान हुई। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और 20वीं सदी के महान वायलिन वादक यहूदी मेनोहिन के भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया।
1: साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। वादकों को बहुत कम पैसे मिलते थे, इसलिए उन्होंने चेन्नई जाकर किस्मत आजमाई, मगर वहां भी हालत ऐसी ही थी। सो दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। वो फिल्मों में संगीतकार नहीं बनना चाहते थे, उनका सपना वियना जाकर किसी सिंफनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया और दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो सपना सच करेंगे। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना जिसका संगीत इस महान जोड़ी ने दिया है और गाने के बोल है वो है जरा खफा खफा।

आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और आज मैं आपके साथ हूं प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादों में। और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल अलग अलग सोच रखते थे। लक्ष्मीकांत संगीतकार बनना चाहते थे और प्यारेलाल बाहर जाना चाहते थे एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए। दोनों के सपने टकराए, उनके रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, मगर दोस्ती ने जोर मारा तो लक्ष्मीकांत जिद पर अट गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देख प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की यह दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में रफी किशोर के गाने सलामत रहे दोस्ताना हम

0: इस जोड़ी को राजश्री प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा रहे थे। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी और आखिर बाजी मारी दोस्ती ने। इस टीम ने अपने गुरु को पीछे छोड़ दिया था।
1: मामला यही नहीं रुका, जो मनोज कुमार और मनमोहन देसाई कल्याण जी आनंद जी को अपने फिल्मों का संगीतकार बनाते रहे, उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अपनी फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी सौंप दी। संगीत के जानकार रहे शोमैन राज कपूर ने भी जयकिशन के निधन के बाद बॉबी से लक्ष्मी प्यारे को मौका दिया और उनका साथ प्रेम रोग तक चलता रहा। आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो इस संगीतकार जोड़ी की जिंदगी के साथ जुड़ा है और इन्होंने इस गाने का संगीत भी दिया है। सुनते हैं फिल्म दोस्ताना से सलामत रहे दोस्ताना हमारा।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादें और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। प्यारेलाल का बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा। उनकी मां का देहांत बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। उनके पिता पंडित रामप्रसाद जी ट्रम्पेट बजाते थे और चाहते थे कि प्यारेलाल वायलिन सीखे। पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। वे घर घर जाते थे जब कभी भी कहीं उन्हें बजाने का मौका मिलता और साथ में प्यारे को भी ले जाते। उनका मासूम चेहरा सबको आकर्षित करता था। एक बार पंडित जी उन्हें लता मंगेशकर के घर ले गए। लता जी प्यारे की वायलिन वादन से इतनी खुश हुए कि उन्होंने उनको 500 रुपए का इनाम दिया, जो उस जमाने की बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वो घंटों वायलिन का रियाज करते और अपनी मेहनत के दम पर उन्हें मुंबई के रंजीत स्टूडियो के ऑर्केस्ट्रा में नौकरी मिल गई, जहां उन्हें 85 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। अब उनके परिवार का पालन उन्हीं पैसों से होने लगा। उन्होंने एक रात्रि स्कूल में 7वें ग्रेड की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और 3 रुपए मासिक फीस उठा पाने की असमर्थता के चलते उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। मुश्किल हालातों ने भी उनके हौसले को कम नहीं किया। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। अपने संगीत के दम पर अपने लिए नाम कमाना और देश विदेश की यात्रा करना उनका सपना था।
1: प्यारेलाल जी ये कहते हैं, मैंने संगीत सीखने के लिए एक संगीत ग्रुप मदरिगल सिंगर ज्वाइन किया, पर वहां मुझे हिंदू होने के कारण स्टेज आदि पर परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था। वो लोग पारसी और ईसाई वादकों को अधिक बढ़ावा देते थे, पर मुझे सीखना था तो मैंने सब कुछ सहकर वहां पे टिका रहा। पर मेरे पिता ये सब अधिकतर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने खुद गरीब बच्चों को मुफ्त में सिखाना शुरू किया और उसका जिम्मा उठाया, और वो उन्हें संगीतकार नौशाद साहब के घर भी ले जाया करते थे। करीब 1500 बच्चों को मेरे पिता ने तालीम दी। बहुत कम लोग होते हैं जो जरूरतमंदों को अपनी शिक्षा देते हैं और उनको सही रास्ते पर डाल देते हैं। आइए सुनते हैं हम एक बहुत ही मनमोहक गाना जिसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी ने दिया है, फिल्म एक दूजे के लिए, और गाने के बोल है तेरे मेरे बीच में।

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है रेडियो विदस्ता, उनके लिए मैं ये कह दूं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादें, और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। प्यारेलाल जी का असली नाम प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा है, जिनको प्यार से प्यारेलाल के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 3 सितंबर 1940 को गोरखपुर में हुआ था। इनकी कर्मभूमि मुंबई और कर्म क्षेत्र है संगीतकार। उन दिनों लक्ष्मीकांत पंडित हुसनलाल भगतराम के साथ काम करते थे। वो मुझसे 3 साल बड़े थे उम्र में। धीरे धीरे हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे, साथ बजाते और कभी कभी क्रिकेट भी खेलते और संगीत पर लंबी चर्चाएं करते। हमारे शौक और सपने एक जैसे होने के कारण हम बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। सी रामचंद्र जी ने एक बार मुझे बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ा काम देने वाला हूं। वो लक्ष्मी से पहले ही इस बारे में बात कर चुके थे। चने में हमने 2.5 साल साथ काम किया। फिल्म थी देवता, कलाकार थे जैमिनी गणेश, वैजंती माला और सावित्री, जिसके हमें 6,000 रुपए मिले थे। यह पहली बार था जब मैंने इतने पैसे एक साथ देखे। मैंने इन पैसों से अपने पिता के लिए एक सोने की अंगूठी खरीदी, जिसकी कीमत 1200 रुपए थी।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को बेहतरीन गाने दिए। इनमें से कुछ हैं, सावन का महीना फिल्म मिलन, दिल विल प्यार व्यार फिल्म शागिर्द, बिंदिया चमकेगी फिल्म दो रास्ते, महंगाई मार गई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, डफली वाले फिल्म सरगम, तू मेरा हीरो है फिल्म हीरो, यशोदा का नंदलाला फिल्म संजोग, चिट्ठी आई है फिल्म नाम, 1, 2, 3 फिल्म तेजाब। आइए सुनाती हूँ इन्हीं का एक मनमोहक गाना, जो है महंगाई मार गई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से।
2: उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी, उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी, उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक

0: लक्ष्मीकांत का जन्म 3 नवंबर 1937 में हुआ था। 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देना पड़ा। बचपन के दिनों से ही लक्ष्मीकांत का रुझान संगीत की ओर था और वो संगीतकार बनना चाहते थे। लक्ष्मीकांत ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद हुसैन अली से हासिल की। इस बीच घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्मीकांत ने संगीत समारोह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आगे जाकर वादी यंत्र मेंडोलिन बजाने की शिक्षा बाल मुकंद इंदौरकर से ली।
1: लक्ष्मीकांत पैरेलल की जोड़ी के रूप में फिल्म जगत में अपने संगीत का लोहा मनवा कर ही माने। अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के सहायक के रूप में उन्होंने फिल्म मदारी, सट्टा बाजार, छलिया और दिल भी तेरा हम भी तेरे जैसी फिल्मों में काम किया। इस जोड़ी पर संगीत का ऐसा जुनून था कि मशहूर निर्माता निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री की क्लासिकल फिल्म पारसमणि ने इनकी तकदीर ही बदल कर रख दी। फिर पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। सभी सुनने वालों के लिए पेश करते हैं इनका एक और मशहूर गाना, जिसके बोल है, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो।

आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में एक बार फिर, जिसका नाम है बॉलीवुड की सुनहरी यादें। इस सफर में मैं भारत चौपड़ी आपके साथ हूं और मेरा साथ दे रही हैं आज ये शिवानी। और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। 70 और 80 के दशक में LP का सामान्य अर्थ लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड के अलावा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी लिया जाता था। इसका एक सीधा मतलब ये था कि उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड प्रदर्शित होते थे उनमें बहुतायत में LP ही बतौर संगीतकार मौजूद रहते थे। लक्ष्मीकांत कुदालकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के इस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया। वो हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर जैसे हैं। इस बारे में कोई शक ही नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी ही शायद अकेले ऐसे शीर्ष संगीतकार जोड़ी रही है जिसने लोकप्रियता के मामले में बाकी जोड़ियों को पीछे छोड़ दिया था। LP की तुलना में हम शंकर जयकिशन और कल्याण जी आनंद के सदाबहार युगल अवधान को याद कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मिलकर संगीत की साम्राज्य की ये प्रभावी तिकड़ी का फिल्म संगीत में अलग ही स्थान था। आइए हम ये चर्चा जारी रखते हैं और आपको सुनाते हैं इस मनमोहक जोड़ी का संगीत माई ये गाना जिसके बोल है हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जहां अपने आरंभिक दिनों में शंकर जयकिशन की धुनों से प्रभावित थे, वहीं उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कार्य करने से पहले कुछ दिनों तक कल्याण जी आनंद जी के सहायक के बतौर काम किया था। हंसता हुआ नूरानी चेहरा जैसे बेहद कर्णप्रिय व ऑर्केस्ट्रेशन से सजे गीत से बाबूभाई मिस्त्री की फिल्म पारसमणि 1963 से एकाएक मुख्य धारा में शामिल होने वाली यह संगीतकार जोड़ी जैसे प्रतिभा की प्रचुरता को अपने साथ तूफान की तरह लेकर आई। स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने से पहले दोनों फनकार दूसरे बड़े संगीत निर्माताओं के यहाँ साज बजाने का काम भी करते थे। लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारेलाल जुबिन मेहता से बुरी तरह प्रेरित होकर वियना जाकर एक वायलिन वादक का करियर चुनने का मन बना चुके थे। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी नागिन के गीत जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया एवं सचिन देव बर्मन की लाजवंती के कोई आया धड़कन कहती है में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था।
1: इसी तरह मदन मोहन वाली हकीकत के गीत मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था मैं प्रयुक्त वायलिन प्यारेलाल ने ही बजाया था। आज भी संगीत के अधिकांश जानकारों के मुताबिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से बेहतर ऑर्केस्ट्रेशन की तमीज शायद ही किसी दूसरे संगीतकार के यहाँ मिलती है। आइए सुनते हैं इनका वो गाना जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ था। सुनते हैं हंसता हुआ नूरानी चेहरा।

0: है कि प्यारेलाल से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्यारेलाल के पिता राम प्रसाद एक बेहतरीन वॉलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर भी वॉलिन एवं पाश्चात्य म्यूजिक के नोटेशन सीखने जाया करते थे। उन्होंने भरतपुर के महाराजा किशन सिंह महाराज के यहाँ बैंड में ट्रम्पेट भी बजाई है और 5वें दशक की कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया है। वे व्यावसायिक रूप से उतने सफल संगीतकार नहीं हो सके, मगर अपने विलक्षण संगीत ज्ञान के चलते ज्यादातर संगीतकारों सी रामचंद्र, नौशाद एवं के दत्ता के यहाँ उनकी फिल्मी धुनों में बरसों तक ट्रम्पेट बजाया है। उन्हीं के संस्कारों और प्रभाव के चलते प्यारेलाल में एक बेहतरीन कंपोजर और ऑर्केस्ट्रा अरेंजर के गुण विकसित हो सके। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली एलपी की बनाई धुनों के माध्यम से बेहतर तरीके से दिखाई देती है। इसमें अतिरिक्त मिठास घोलने में उनकी शास्त्रीय संगीत पर मजबूत पकड़ और शास्त्रीय तालों का समुचित ज्ञान भी सहायता करता है। इसी के साथ सुनाते हैं इस मशहूर जोड़े का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत, जिसके बोल हैं पत्थर के सनम।
1: पत्थर

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादें और आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे थे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में। ये इस कार्यक्रम का अंतिम भाग है। ये कहा जाता है कि जब सारे दिग्गज संगीत निर्माता 60 के दशक के उत्तरार्ध में अधिक सफल तरीके से रुपहले पर्दे पर सक्रिय थे, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को शुरुआती काम दिलाने एवं स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित होने में मदद करने के लिए लता मंगेशकर ने अहम भूमिका निभाई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सार्थक अवधान की सूची भी शायद इसलिए बेहद लंबी होगी जिसमें सभी का जिक्र या नामोल्लेख कर पाना एक अध्याय की सीमा से परे की चीज लगती है। फिर ये मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब हम ये देखते हैं कि साधारण या विशुद्ध रूप से फ्लॉप किसी फिल्म में यदि लक्ष्मी प्यारे मौजूद हैं तो शर्तिया वहां एक गीत ऐसा अवश्य होगा जो ठीक ढंग से संगीत प्रेमियों के बीच में चर्चा में आया होगा।
1: यह भी संभव है कि उसकी लोकप्रियता रेडियो पर बजकर या रिकॉर्ड व कैसेटों की उल्लेखनीय बिक्री से पुख्ता तौर पर बनी होगी। इसी कारण वह गीत निश्चित ही अपनी फिल्मों की असफलता से निरपेक्ष रहते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत प्रतिभा के सामर्थ्य को व्यक्त करता रहा होगा। इसलिए हमें LP के संगीत पटल को पूरी तरह किसी फहरिस्त में बांधकर रख पाने में असमर्थ ही दिखाई देते हैं। फिर भी उनकी प्रतिभा का सबसे नायाब नमूना माने जाने वाली कुछ फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं जो एक अनूठा LP टाइप बनाती रही है।
0: इसके साथ ही इस प्रोग्राम का समय समाप्त हुआ चाहता है। इस प्रोग्राम का हम यही समापन करते हैं। दीजिए इजाजत, किसी और प्रोग्राम में आपके साथ फिर रूबरू होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: मुझे भी दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

ہم سفر ہم راز ہوں تا قیامت, تا قیامت

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं, अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर शीतल कुमार के साथ की गई भेंट वार्ता सुनिए। आपकी बातचीत का विषय है माइग्रेन, कारण और उपचार।
2: डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
3: थैंक यू
2: डॉक्टर साहब। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपसे एक बीमारी का नाम हमने सुना है माइग्रेन, ये क्या बीमारी है?
3: माइग्रेन हमारे सिर से संबंधित एक बीमारी है जिसमें जनरली हमें सिर का दर्द आमतौर पर दिखाई पड़ता है और इसका जो ट्रेंड है आने का किसी भी पेशेंट में वो रिकरेंट होता है, जिसको हम आम भाषा में कहेंगे बार बार आता है और एपिसोड्स में आता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, कुछ समय के बाद ये रिपीट होता है, बार बार आता है
2: जी।
3: तो जिसमें आमतौर पर सिर दर्द के साथ हमें उल्टी का मन या फिर उल्टी का आ ही जाना या इसमें कभी कभी लूज मोशन जिसको हम डायरिया कहते हैं वो भी इंड्यूस होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें तेज़ सिर का दर्द और जो कि हमारे आधे सिर में ज़्यादातर पाया जाता है उसके साथ साथ उल्टी का मन होना और उल्टी का कभी कभी आ जाना ही पाया जाता है।
2: ये तो एक तो डॉक्टर साहब सिर दर्द आम जिसे हम कहते हैं, कभी हर इंसान को इस तरह की बीमारी
3: कभी कभी हो जाती है।
2: ये कुछ अलग है माइग्रेन।
3: माइग्रेन अलग अपने इसी कैरेक्टर के साथ है कि ये बार बार आती है और सबसे पहली बात ये है कि इसमें हम इसको कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को इस दर्द के आने से पहले किसी हद तक मालूम पड़ जाता है, जिसको हम ऑरा कहते हैं या प्रोड्रोम हमारी एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, तो पेशेंट को इसका आभास पहले ही हो जाता है कि कुछ गलत मेरे शरीर के साथ हो रहा है और कुछ गड़बड़ होने वाली है। आमतौर पर आप ये कह सकते हैं अमूमन 70-80% लोगों के बीच में पेशेंट को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और जनरली 1-2 के बाद उसको सिर का दर्द शुरू हो जाता है। इस तरह से ये बाकी सिर से अलग है, आपको कई सारे ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो इसको इंड्यूस करते हैं, बार बार इसको लाते हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना, तेज़ मिर्च मसाले खा लेना, उससे ये एकदम से आता
2: अच्छा,
3: है।
2: इसके रूट्स कहाँ पे हैं, अगर हम इसके रूट्स जानना चाहेंगे आपसे?
3: रूट्स जानना चाहेंगे तो इतना क्लियर नहीं है साइंटिफिकली, लेकिन जनरली क्या है कि हेरिडिटरी चलता है, अनुवांशिकी के ऊपर। जैसे कि जिनके पेरेंट्स को अगर ये बीमारी है तो बच्चों में जनरली आती है, आमतौर पे आ जाती है, नहीं भी आए कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन जनरली आ जाती है। तो मेन कॉज तो उसका यही आ जाता है कि हेरिडिटरी आता है। लेकिन अब शरीर में देखें तो इसको 2 थ्योरीज में बांटा गया है। पहली हमारी वेस्कुलर थ्योरी जिसको हम कहते हैं और दूसरी न्यूरोलॉजिक है। और आम भाषा में वेस्कुलर कहेंगे जो हमारी रक्तवाहिनी है जिसमें हमारा खून दौड़ता है, कुछ उसके कारण है और कुछ हमारी जो नाड़ियाँ हैं जिससे हमारा सारा शरीर चलता है, ब्रेन्स के साथ हमारे मस्तिष्क के साथ, तो उसके थ्रू भी ये आता है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, महिलाओं में अक्सर इस तरह की बीमारी माइग्रेन
3: जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, तकरीबन 70-80% महिलाएं इससे ग्रसित होती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट कारण उसका ये माना जाता है कि आमतौर पर औरतों के ऊपर हमारे देश में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। देखने में हम आम आदमी कह देता है कि घर में काम ही क्या होता है, लेकिन घर में अगर आप देखें तो बहुत काम होते हैं। अगर एक आम आदमी घर बिठाकर उसको औरत का काम दे दिया जाए तो शाम तक वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। और बड़ी सारी चीज़ें हैं, औरत अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है, डिप्रेशन एक साथ साथ एक वर्ड चलता है औरतों के साथ, पैरेलल समानांतर चलता है, क्योंकि सास का प्रेशर होता है, देवर भाभियाँ हैं और चीज़ें हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो एक डिप्रेशन या एक अवसाद जिसको कहते हैं मानसिक तौर पर, औरत उससे ग्रसित रहती है। वो ट्रिगर फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर जो माइग्रेन का है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन से हमारे उसमें ब्रेन में ऐसी चेंजेस आती हैं, न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं सडनली, फिर एकदम से वो किल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण औरतों में ज़्यादा पाया जाता है।
2: यानी आपका कहना है कि डिप्रेशन से
3: डिप्रेशन ही इसका
2: माइग्रेन बीमारी का
3: एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है, डिप्रेशन ही इसको कॉज कराएगा और स्टार्ट हमेशा डिप्रेशन से होगा
2: जी।
3: वो स्प्रेड करेगी बॉडी में, डिप्रेशन के बाद ही ये चीज़ें जनरली आती हैं।
2: एक्यूट में होता है ये माइग्रेन जबरदस्त?
3: एग्जैक्टली, ये बहुत तेज दर्द होता है। पेशेंट का हम जब डायग्नोसिस बनाते हैं तो दर्द के कैरेक्टर से ही बनाते हैं और आमतौर पर दर्द खत्म होने के बाद ही हम इसका डायग्नोसिस बना पाते हैं कि ये माइग्रेन था, क्योंकि आमतौर पर इस दर्द के बाद पेशेंट इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि उस पर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बचती, दर्द चला जाता है, लेकिन एक दो दिन वो इतना परेशान रहता है, उसकी दर्द की वो हालत कर दी होती है बॉडी की कि वो पूरा ड्रेन्ड होता है।
2: बच्चों में भी क्या इस तरह की बीमारी पाई जाती है?
3: बच्चों से अगर हम ये कहें तो हम लेट चाइल्डहुड यानी कि बच्चों की देर वाली अवस्था, जैसे 12-13 साल की उम्र में ही ये बीमारी आमतौर पर शुरू हो जाती है, late 20s early 30s इसमें ज़्यादा जाती है। फिर एक बार जो हो जाती है तो वो ज़िंदगी भर तो छोड़ती नहीं है, उसे सिर्फ प्रिवेंशन ही रह सकता है और इसका ट्रीटमेंट तो है नहीं कि एक बार ठीक कर दिया दोबारा नहीं आएगा, वो रिकरेंट आएगा, इसीलिए माइग्रेन है।
2: जी जी,
3: तो बच्चों में ज़रूर पाई जाती है लेकिन 12-14 साल की उम्र के बाद, उससे पहले आमतौर पर नहीं मिलती।
2: यानी आप ये मानते हैं कि डिप्रेशन से माइग्रेन की बीमारी?
3: बिल्कुल सही बात है, डिप्रेशन ही इसको कॉज कराती है, हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालती है जिसके बाद ये अपने पूरी तरह से बाहर आता है बीमारी, तो स्टार्ट उसका डिप्रेशन से ही।
2: इसमें कोई सर्जिकल प्रॉब्लम होती है या?
3: जी नहीं, इसमें सर्जिकल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही सर्जरी की वजह से होता है। हाँ, अगर किसी का ब्रेन सर्जरी करते समय ट्राइजेमिनल नर्व एक होती है हमारी बॉडी में, उसको अगर छेड़ दिया जाए तो पॉसिबल है उससे वो ट्रिगर हो सकता है कभी ना कभी।
2: अच्छा, इस बीमारी से कितने कितनी परसेंटेज ग्रस्त है?
3: बहुत कम, लेकिन आजकल के हिसाब से देखा जाए तो बढ़ रही है, पहले इतना नहीं था, लेकिन आजकल की बहुत भागम भाग जिंदगी, तनाव इतना ज़्यादा है, काम का लोड ज़्यादा है, तो हर दिन ये बढ़ती जा रही है और प्रेवलेंस इसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्लियर।
2: डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करेंगे, आपकी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
3: देखिए, मैं तो किशोर के गानों का ही फैन हूँ, तो अपनी पसंद से किशोर का कोई गाना सुना सकते हैं या फिर सफर फिल्म का एक गीत सुनवा दीजिए। सफर के सारे गाने अच्छे हैं।
2: आपकी पसंद का गीत हम सफर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।
3: थैंक यू।
4: है ये कैसा सफर।

0: डॉक्टर शीतल कुमार आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बात करेंगे आपसे माइग्रेन के बारे में, हम बात कर रहे हैं जी। अब अगर हम लक्षण की बात करें, अभी आपने बताया कि एक पेशेंट को पहले ही पता चलता है कि मुझे इस तरह की बीमारी होने वाली है, इसके लक्षण क्या है?
1: देखिए, लक्षणों को हम थ्योरेटिकली किताबी भाषा से तो 3-4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उसके 4 स्टेजेस हम मानते हैं, जिसको पेशेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि इसके मेरे को 4 स्टेजेस में ये बीमारी आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ने या समझने के हिसाब से उसको हम इसमें बांटते हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं प्रोड्रोम स्टेज कहते हैं, जो कि बीमारी से पहले की स्टेज होती है। फिर एक ऑरा स्टेज होती है, जिसमें पेशेंट की ब्लरिंग होती है, विजन की साफ दिखाई नहीं पड़ता है, आंखें चुंधी आती हैं, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। और सबसे जो मेन लक्षण है, तीसरा आता है इसका, सिरदर्द का, जिसको हम हेडेक कहते हैं, जो सबको पता चलता है कि अब हो गया
0: जी।
1: और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे क्लिनिकल लेवल पे डायग्नोसिस बनाने के लिए,
0: इसकी इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करते हैं?
1: इन्वेस्टिगेशन जनरली इसकी क्लिनिकल ही होती है
0: जी।
1: इसके ब्लड टेस्ट या ये सब कराने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। इसकी क्लिनिकल ही डायग्नोसिस होती है, पेशेंट की हिस्ट्री सुनकर, उसको जानकर कि कैसे शुरू हुआ, कितनी देर हो गई, कितना लंबा अटैक आया, उससे ही बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा कन्फर्मेटरी हमारा जो रहता है वो इसका पोस्टरम, यानी कि बीमारी ख़त्म होने के बाद की स्टेज है।
0: कितने दिनों तक माइग्रेन रहता है?
1: आमतौर पे 1 या 2 दिन तक माइग्रेन रहता ही है, कई लोगों को 3-3 दिन भी चलता है। तो एक टर्म होती है 3 दिन से ऊपर जिसका माइग्रेन कंटिन्यू कर जाता है, उसको हम स्टेटस माइग्रेनोसस कहते हैं, कि वो कंटिन्यूसली माइग्रेन के अटैक में रहता है। तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस स्टेज, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, फुल्ली ड्रेनड आउट हो जाता है, एग्जॉशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आमतौर पर अगर हम इसको देखें तो 1-2 दिन तक रहता है
0: जी।
1: तो प्रोड्रोम, जो मैंने आपको बताया कि जो बीमारी के आने से पहले की स्टेज है, उसमें ये समझ लीजिए कि 4-6 दिन या हफ्ता पहले पेशेंट को कुछ ऐसे आभास होने लगते हैं कि कुछ मेरे साथ गलत है, वो सो नहीं पाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है और अपने किसी काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो वहाँ से उसको लगता है कि कुछ गलत मेरे शरीर में हो रहा है। तो सेकेंड स्टेज जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं ऑरा की, वो सब मरीजों में नहीं पाई जाती, किसी में जनरली 50-60% तक होती ही नहीं।
0: जी।
1: और जिनको होती है उनको जनरली आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम होती दिखाई देती है, साफ नहीं देख पाते हैं, अदरवाइज वो ठीक देखते हैं, लेकिन इस स्टेज में वो थोड़ा सा कम देख पाते
0: ये
1: हैं।
0: जो माइग्रेन है, सिर के पूरे हिस्से में होता है या?
1: जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, वैसे तो सेट करेक्टर नहीं है, लेकिन आमतौर पर आपको ये सिर के आधे हिस्से ही मिलेगा, लेफ्ट हाफ में या फिर राइट हाफ में। लेकिन सिम्टम डिफर करते हैं, सेम पेशेंट में बार बार डिफरेंट सिम्टम हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। हम अगर ये कहें कि सेट पैटर्न पे इसी तरह का दर्द आएगा, ऐसा नहीं। तो ये कई बार फेस से भी शुरू होता है, मुंह से भी शुरू हो सकता है, सिर से भी शुरू हो सकता है। आमतौर पे आप इसको ये सिर के आधे ही हिस्से में मिलेगा, पूरे हिस्से में नहीं मिलेगा आपको। तो हेडेक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, उसके साथ आपको ये जो उल्टी का आना है, ये एक सबसे कॉमन फैक्टर है कि उल्टी जैसा मन करता है या उल्टी आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं से हम डायग्नोसिस बनाना शुरू कर देते हैं कि ये माइग्रेन हो सकता है। और जब पेशेंट ये बताता है कि 1-2 दिन जा चुका है, दवाई थोड़ी बहुत खा के भी नहीं जा रहा है, तो हमारा विश्वास और पक्का होता चला जाता है कि माइग्रेन की तरफ ही है।
0: जी।
1: फिर भी 2-3 बार अटैक आने के बाद ही हम उसको लेबल करते हैं कि ये माइग्रेन का दर्द है। अगर पेशेंट बार बार एक ही डॉक्टर से मिलता है और बताता है कि 2 बार मुझे पहले हो चुका है, 3री बार आ गया है, 4थी बार हो गया है, तो फिर हम विश्वास से ये बात कह देते हैं कि अब ये माइग्रेन है और उसकी कुछ प्रिवेंशन है जो आदमी कर सकता है। और हेडेक के अलावा जो हमको, मैं बता रहा था आपको कि जो बाद वाली स्टेज है, पेशेंट ठीक होने के बाद इतना थकान महसूस करता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता है, वो हमें और भी ज़्यादा विश्वास दिलाती है कि जिस बीमारी से आदमी ये ग्रसित था वो माइग्रेन ही थी। और इसके अलावा लक्षण तो ज़्यादा इसमें और दिखते नहीं हैं। और ये ज़रूर है कि
0: खास आपने बताया कि डिप्रेशन
1: डिप्रेशन से शुरू होगा,
0: शुरू हो जाओ,
1: और आमतौर पर डिप्रेशन शुरू होगा, पेशेंट को नहीं पता चलता है, एक आम आदमी अपने आप को डिप्रेशन में नहीं गिनता है, जबकि आज की भागम भाग वाली जिंदगी में डिप्रेशन सभी की जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है।
0: किस उम्र में ये होता है?
1: जनरली ट्वेंटीज लेडीज में ज्यादा पाया जाएगा। और एक बार किसी में ये एस्टेब्लिश हो गया किसी को माइग्रेन, तो फिर तो रिपीटेड अटैक्स आते हैं, जो माइग्रेन का कैरेक्टर है कि रिपीटेड रिकरेंट अटैक्स, बार बार आएंगे, दर्द होगी और एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न में होगी कि इतने दिन की होगी, उल्टी आएगी, कुछ काम नहीं
0: ये
1: होगा।
0: कितनी बार महीने में इस तरह की?
1: नहीं, आने को अगर हम महीने का हिसाब देखेंगे तो पेशेंट के लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों का काम इस तरह का है कि उनको भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना पड़ता है, डस्ट में जाना पड़ता है, या फिर जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होता है, ये सारे फैक्टर उसको बार बार अटैक की तरफ लेके जाएंगे। तो
0: जी।
1: आप ये समझ लीजिए कि अगर उसका प्रोफेशन ऐसा है कि कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर बहुत शोर है, तो महीने में 10 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता।
0: जी, और शरीर के किस अंग को ये नुकसान पहुंचाता है अगर माइग्रेन हो?
1: देखिए, कोई भी बीमारी शरीर में होगी तो सारा शरीर उससे प्रॉब्लम में आ जाता है। अगर हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, हम ठीक से खा नहीं सकेंगे, पी नहीं पाएंगे, अल्टीमेटली पेशेंट का जो इफेक्ट है, पेशेंट के ऊपर माइग्रेन का फाइनल इफेक्ट है, दैट इज़ पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस, ठीक से खाना नहीं खा पाना, और फाइनली जब पेशेंट ठीक से आहार नहीं लेगा तो बॉडी ने वीक होना है और बहुत सारी बीमारियां उसको पकड़ सकती हैं। बट अदरवाइज़ किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को, हाथ को, पैर को, या किसी ऑर्गन को वो इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं।
0: आपने बताया कि इसका इलाज नहीं है,
1: इलाज का एक प्रॉपर तरीका नहीं है।
0: हम इस पर चर्चा करेंगे अगले हिस्से में। अभी अपनी पसंद का एक और गाना आप ज़रा बताइए, कौन सी फिल्म का गाना है?
1: अक्सर हमराज पिक्चर का गाना सुनता हूँ मैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो,
0: जी, महेंद्र कपूर की आवाज़
1: जी, बहुत अच्छा गाना।
0: बी आर चोपड़ा साहब की फिल्म रही है, बहुत ही शानदार फिल्म रही है
1: जी, बिल्कुल।

0: महफिल सजाता रहूं तुम मगर साथ देने का।
1: डॉक्टर शीतल कुमार हमारे साथ हैं आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अब हम इस कार्यक्रम के अगले आखिरी हिस्से में आए हैं। अगर हम इलाज की बात करें, आपने वैसे कहा कि इसमें इलाज कोई नहीं है, ऐसा क्यों?
2: इलाज की बात देखिए, ऐसा है कि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक बीमारी है, हम इससे बच सकते हैं। इलाज तो किसी को दर्द है तो दवाई से वो दर्द तो चला जाएगा, लेकिन बीमारी को हम अप्रूट या उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। तो अगर पेशेंट कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां बरते तो उसको बार बार ये बीमारी नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंटली, जनरली लोग क्या करते हैं, दर्द होने पर एक पहला काम होता है पैरासिटामोल की गोली या एक एस्पिरिन की गोली एक ली जाती है, उसमें कुछ गलत नहीं,
1: घरेलू नुस्खा,
2: घरेलू नुस्खा है, सबको पता है, ओवर द काउंटर मिलता है, पेशेंट जाता है मेडिकल स्टोर पर, दो गोली ले आता है, खा लेता है। आमतौर
1: वैसे भी ये हम यहाँ पे अपने सुनने वालों को ये कहना चाहेंगे कि खुद आप दवाई कोई मत इस्तेमाल करें।
2: जी, सेल्फ मेडिकेशन अच्छा नहीं होता है, लेकिन जिसका केस इस्टेब्लिश हो गया है कि माइग्रेन है तो उसको कुछ दवाइयाँ अपने पास रखनी पड़ती हैं कि सडनली एक भी बीमारी आती है या दर्द आती है तो उसको एकदम से कुछ इलाज तो चाहिए। लेकिन माइल्ड अटैक में या माइनर अटैक्स में हम ये समझते हैं कि एस्पिरिन या पीसीएम खाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई खा सकता है। प्रॉब्लम ये आती है, पेशेंट को डोज का पता नहीं, ले तो सकता है, पीसीएम ले आएगा, बच्चा 12 साल का है, पीसीएम कितना खिलाना है ये नहीं पता है, अपने हिसाब से वो बच्चे को सोचेगा कि 12 साल का है आधी गोली दे देते हैं या उसका एक क्वार्टर दे देते हैं। तो हायर मेडिकेशन या लो डोसेज में एक मेडिकेशन हमेशा नुकसान करेगी, एक प्रॉपर डोज में नहीं आएगी, तो इसलिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक माइनर अटैक है पीसीएम का, उसको पता है तो वो ले सकता है और उससे चला भी जाएगा, एस्पिरिन की गोली से, पैरासिटामोल की गोली से वो दर्द चला जाता है। प्रॉब्लम आती है जब अटैक थोड़ा मॉडरेट या सीवियर होता है, वहाँ फिर ये सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। तो प्रोफिलेक्सिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका लाइफस्टाइल। आपको बचना है लंबे सफ़र से, पहाड़ी सफ़र से, भीड़ से, तेज़ मसाले वाले खाने से, और जैसे बहुत शोर वाला इलाका है उससे, धुएं से, पॉल्यूशन से, इन चीज़ों से जितना बच सकेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कोई त्यौहार का टाइम आ रहा है तो हरिद्वार सब लोग दौड़ते हैं कि आज वहाँ नहाने जाना है, कुंभ का मेला है, कुछ है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो धार्मिक आस्था होती है, जाना होता है। तो जो माइग्रेन का पेशेंट है जिसको पता है कि मुझे ऐसा होता है, तो उसको उस चीज़ में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पहुँचने के लिए भी एक भीड़ वाली बस में ठसाठस भर के जाएगा और उसको जब पहुँचने से पहले उसको माइग्रेन का अटैक डेफिनेटली आ जाएगा।
1: जी,
2: वहाँ जाएगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी, बहुत कंजेशन होगी, वहाँ परेशान रहेगा। तो ऐसे में इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए।
1: आपने बताया डॉक्टर साहब कि खाने पीने की चीज़ों को एहतियात,
2: हाँ बिल्कुल, क्योंकि तेज़ मसाला है, तेज आपको गैस्ट्राइटिस कराएगा और जब भी वॉमिटिंग आपने इंड्यूस होगी उसमें माइग्रेन को हेल्प करेगा, इसलिए उससे बचना चाहिए। आजकल फास्ट फूड का चलन हो गया है,
1: जी,
2: हर आदमी बर्गर के पीछे दौड़ता है, हॉट डॉग के पीछे दौड़ता है, छोटे छोटे गाँव में भी हॉट डॉग की रेडियाँ आपको देखने को मिलेंगी आजकल। सबसे पहली बात, हाइजीनिक नहीं होता है, साफ़ नहीं होता है,
1: जी,
2: पहली बीमारी वहीं से, अगर माइग्रेन नहीं आएगी तो कोई पेट की बीमारी आएगी। तो मैं माफ़ी चाहूँगा उन सब लोगों से जो हॉट डॉग बेचते हैं, पर अगर वो सफाई से बेचें तो हमें इससे कोई इतराज़ नहीं,
1: जी,
2: लेकिन अगर उसको ठीक से ढक के रखें, बरसात है, चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं, जो चीज़ें ख़राब हैं उनको फेंक दें, नए सिरे से ले लें।
1: डॉक्टर साहब, परमानेंट सोल्यूशन इस डिजीज़ का
2: यही है सिर्फ सोल्यूशन, क्योंकि आपको मैंने बताया कि प्रोड्रोम स्टेज है, पेशेंट को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, और जिसका एक बार ये डिज़ीज़ इस्टेब्लिश हो गया, डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया कि ये माइग्रेन आपको है, उस पेशेंट को हमेशा अपने कैरी बैग में या अपनी सबसे नज़दीक वाली अप्रोच वाली जगह पे एक मेडिसिन का स्ट्रिप रखना चाहिए कि जो मैं इमरजेंसी में खा सकूं। दूसरी बात, अटैक आने से पहले अगर मेडिसिन ले ली जाती है तो उससे क्या होता है, अटैक अपने सीवियर फॉर्म में नहीं आता है, वो एक आध दिन में सबसाइड कर जाएगा और दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। तो अगर पेशेंट उस समय लापरवाही करेगा कि सिर में दर्द ही है, चला जाएगा, कल तक चला जाएगा, जिसको पता नहीं है माइग्रेन वो तो ऐसा ही करेगा, लेकिन जिसको पता है कि मुझे माइग्रेन है उसको कभी इससे वो नहीं करना, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।
1: अगर हम ये मान के चलते हैं कि महिलाओं में इस तरह की बीमारी ज़्यादा होती है, तो महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
2: महिलाएं हमेशा अपने साथ एक पर्स कैरी करती हैं, हैंड बैग कैरी करती हैं,
1: वो तो ठीक है, लेकिन और क्या परहेज करना?
2: परहेज यही है कि सबसे बड़ी बात है रिलैक्सेशन, एक बहुत बड़ी बात है,
1: और अपने अंदर तनाव तनाव नहीं,
2: तनाव मुक्त रहना चाहिए। भजन भक्ति तो औरतें करती ही हैं, उससे बहुत सारी मानसिक शांति मिलती है। आजकल योगा का चलन हो गया है, तो योगा से भी हम इसको रोक सकते हैं। और अगर किसी को मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, तो एक सिंपल सा फिनोमेना है कि पैरासिटामोल की टैबलेट और उसके साथ एंटीमेटिक हम कहते हैं जो उल्टी रोकने वाले ड्रग्स हैं, जैसे पेरिनॉर्मल लोग लेते हैं, उसको कॉम्बिनेशन में लें तो बहुत अच्छा काम करती हैं। और सिरिटैग में हम एरगॉट के डेरिवेटिव लेते हैं, जो एक वेसोग्रेन जनरली लोग टैबलेट ले लेते हैं उसमें होता है, लेकिन किसी को उल्टी का मन है तो वेसोग्रेन को अवॉइड करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि हमें तनाव मुक्त रहने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सुबह की सैर है, योगा है, ये सब चीज़ें आदमी को तनाव से मुक्त करती हैं और माइग्रेन आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे।
1: डॉक्टर शीतल कुमार, आप हमारे साथ बने रहे इस आज के कार्यक्रम में। माइग्रेन पे हमने बात की, विस्तार पूर्वक बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पसंद का चलते चलते गीत बताइए, कौन सा हम आपको सुनवाएं?
2: चलिए, अब चलने का समय हो गया है, तो एक तेरे घर के सामने एक फिल्म है, उसका गाना है देखो रूठाना करो, जो मैं अक्सर अपनी वाइफ के लिए गाता हूँ।
1: जी जी जी,
2: वो आप रेडियो पे सुनवा दीजिए।
1: चलिए, आज भी हम उन्हीं के लिए डेडिकेट करें आपकी तरफ से।
2: जी बिल्कुल,
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीतल कुमार, आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में। माइग्रेन पे आपने तफसीलन जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू वेरी मच।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर शीतल कुमार के साथ की गई भेंट वार्ता आप सुन रहे थे। आपकी बातचीत का विषय रहा माइग्रेन, कारण और उपचार। आपके साथ बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। अंबाला के प्यारे श्रोताओं, आज हमारे पास अंबाला के इतिहास और गर्व से जुड़ा एक बेहद खास तोहफा है। आप सब जानते हैं कि अंबाला का शहीद स्मारक अब बनकर तैयार है। ये वो पावन भूमि है जिसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंक कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया था। ये स्मारक हमारे शहीदों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है और इसी महान विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए अंबाला के जाने माने संगीतकार श्री विशाल गोल्डी ओम नमो साउंड्स, जिन्हें हम विशाल शर्मा के नाम से भी जानते हैं, लेकर आए हैं एक जबरदस्त स्वतंत्रता संग्राम थीम सॉन्ग। ये गीत अंबाला की मिट्टी की कहानी कहता है, उस जज्बे को सलाम करता है जिसने देश को आजाद कराने की लौ जलाई। इस गीत को विशाल गोल्डी और हरजीत बिट्टू ने मिलकर लिखा और कंपोज किया है। ये धुन आपके दिल में देशभक्ति का एक नया जोश भर देगी। पेश है अंबाला के गौरवशाली इतिहास को समर्पित शहीद स्मारक थीम सॉन्ग सभी एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहे।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर। क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
1: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आरडी सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहां तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहां बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: रहो अपने पसंदीदा की।
1: राम, अगर हम तुम्हें 5,00,000 रुपया दें तो क्या तुम दूसरा शरीर स्वीकार करोगे?
2: नहीं, कभी नहीं।
1: अच्छा राम, अगर हम तुम्हें 1,00,000 तोला सोना दें तो वापस जाओगे?
2: अयो नको, अगर वो सोना लेके मैं नीचे गया तो वो लोग मेरे को स्मगलर समझ लेंगे।
1: राम यहाँ। कुछ पियोगे?
2: क्या पिलाएंगे आप मेरे को? चाय पिलाएंगे या लस्सी पिलाएंगे?
1: नहीं, सोमरस।
2: सोमरस क्या होता महाराज? अरे अरे, दारू की बात कर रही थी। किधर की दारू पिलाएंगे? गोलकुंडे की या स्कॉचिस की?
1: नहीं, ये देवता लोगों का जलपान है, इसको पीने से तुम मत हो जाओगे।
2: मत हो जाऊंगा क्या? नीचे तो मैं कंट्री पीता था खाली। जल्दी पिलाओ महाराज।

0: Numara kakalar to koko kola gider ta. महाराज
1: बोलो।
0: एक बात याद आ गई महाराज मेरे।
1: पूछो।
0: वो हमारे नीचे ये पीने के लिए कहीं परमिट है कहीं परमिट नहीं है, यहाँ का क्या हिसाब किताब है?
1: मगर यहाँ कोई रोकथाम नहीं, ये देवलोक है, यहाँ जी भर के सोमरस पियो, जी भर के सोमरस पियो।
0: एक दूसरी बात भी याद आ गई महाराज।
1: बोलो।
0: इधर आओ, मैं शराब पीने से पहले ही आपको बोल देता हूँ, बाद में आप ये नहीं बोलना कि मैं नशे में बोल रहा
1: हूँ। अच्छा।
0: एक पोटी थी।
1: पोटी?
0: हाँ, मेरा मतलब एक छोकरी थी।
1: अच्छा।
0: उसका नाम था चुनिया।
1: सुनिया।
0: हाँ, आजकल के जमाने की वो छोकरी थी, उन्हें प्यार मेरे से करती थी, मेरे कंधे पे से किसी दूसरे को देखती थी और उसके दिमाग में कोई तीसरा रहता था, इसलिए उन्हें जल्दी मर गई। अगर आप मेरे को चुनिया से मिला दिए तो मैं बगैर किसी तकलीफ के किसकी भी बॉडी में बोलो घुस जाऊंगा।
1: शाबाश, तो फिर घुस जाओ उन बादलों के झुंड में जहां चुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ
2: चुनिया। अरे किधर है रे?

అది ఘాస్లే దాల్కో కూడాలో నా ఇచ్చేసే మాచిస్కి కాండిలో

दोस्तों बोजन FM नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजन रोजियो पनिन पसंदीद बगत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 MHz पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 7। इसमें हम आपको पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुनाते हैं। इस कार्यक्रम को पेश करेंगे आरजे किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन दिया भारत सोपोरी ने।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। दोस्तों, शब्दों से भरी दुनिया में कुछ आवाजें दिलों को छू जाती है और कुछ सुरों का जादू हमें यादों के सफर पर ले जाता है। आज का ये सफर उन्हीं सुरों के संग होगा जो कभी मुस्कान बनेंगे तो कभी आंखों में नमी लाएंगे। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरने, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और पेश कर रही हूं आज का कार्यक्रम सरगम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के गीतों का सिलसिला। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं प्रेम रोग के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने, जिसके बोल लिखे हैं आमिर कजालबश ने और संगीतकार है लक्ष्मीकांत पैरे।

लीजिए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म शोर का गाना, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने और जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब आपकी नजर पेश है फिल्म जुदाई से गाना, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और गाया है आशा भोसले ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, जिसको आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, और जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म है सुहाग।

लीजिए आप सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, और जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

सभी श्रोताओं के लिए अगला गाना है आनंद बख्शी का लिखा हुआ है, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने, और फिल्म फर्ज का गाना है ये।

अगला नगमा है फिल्म असली नकली से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, और जिसको संगीत दिया है हसरत जयपुरी ने, और उसके बोल लिखे हैं शंकर जयकिशन ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सरगम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अगली पेशकश है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीतबद्ध किया हुआ गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म है सुहाग, और उसको अपनी आवाजों से सजाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

अब सुनते हैं राजेंद्र किशन का लिखा हुआ गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोंसले ने, जिसको संगीत दिया है शंकर जय किशन ने, और फिल्म है सच्चाई।

कार्यक्रम का अगला गाना है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके गीतकार है साहिर लुधियानवी और संगीतकार है खयाम, और फिल्म कभी कभी से लिया गया है।

इसके साथ ही सरगम का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं radiovitasta@gmail.com पर। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 7, जो पुरानी हिंदी फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम था। पेश किया आरजे किरनी ने। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने। एडिट व निर्देशन दिया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
2: पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
3: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
4: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
3: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
4: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
3: अभी कॉल करें 705641301070

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: दीन दुखी और अपाहिज बच्चों के सहायतार्थ फिल्म कलाकारों का मनोरंजन कार्यक्रम।
1: ये आसमान है, जमीन थोड़ी, जो तुम लोग जानवरों की तरह लड़ रहे हो। देखो, अगर मस्ती करोगे तो मैं तुम्हें भगवान के हवाले कर दूंगा। जैसे अपन नीचे जमीन पर राशन के लिए लाइन लगाते ना, वैसे लाइन लगाओ। शाबाश, राशन राशन जैसे चावल मांगते अपन। कैसी औलाद है हाथ?
2: अरे हाथ जोड़ो रे।
3: प्रभु, आज कैलाश में ये कैसी भीड़ है?

0: बोलना जोरू, सबके नाम।
1: प्रभु ये, अरे हटो ना बीच में से। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर गोद में और दिसंबर पेट में।
2: अरे तुम्हारे एक परिवार में इतने सारे बच्चे,
3: क्या करूं भगवान, क्या करूं, ये सब तो आप ही की देन है, क्या करूं।

0: क्या हुआ? क्या हुआ?
1: अब आपको नहीं खेलना चाहिए बस।
0: अच्छा अच्छा, प्रभु प्रभु, इस बढ़ती हुई आबादी की मुसीबत से हम लोग कैसे बचें? आप ब्रह्मा जी से कहिए ना, कुछ दिनों के लिए बच्चों की पैदाइश बंद कर दें।
2: ये कैसे हो सकता है भक्त?
0: तो फिर एक काम करिए प्रभु।
2: वो क्या?
0: प्रभु, इससे आबादी भी कम हो जाएगी, बच्चा बजाय 9 महीने के 18 महीने में पैदा हो। क्यों रोती है?
1: 18 महीने? अरे हम औरतों का हाल क्या होगा? ये बोझ तुम मर्द क्यों नहीं लेते?
0: नको नको नको, ये दर्द मेरे को नको। प्रभु आप ही कुछ बताइए।
2: देखो भक्त, ब्रह्मदेव की सृष्टि को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं।
0: क्या?
2: क्योंकि उन्होंने पहले ही मनुष्य को अनंत शक्ति का वरदान दिया है। यदि मनुष्य सोच समझकर अपना जीवन बिताने का प्रयत्न करे तो उसे सुख और शांति अवश्य प्राप्त होगी।
0: प्राप्त? प्रभु मैं कुछ समझा नहीं।
2: नहीं समझे बालक? अच्छा अब तुम अभी समझ आओगे। सोहम, ये देखो इस आदर्श परिवार को देखो।
0: अरे सिर्फ 2 बच्चे, ये कैसे?
3: ये लीजिए, परिवार नियोजन।
0: परिवार नियोजन? जा प्रभु।
4: ये तुम खुद भी समझ लो।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो
1: देखो दिल न तोड़ो
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

नमस्ते दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको अपनी पसंद के चंद नगमे सुनवाएंगे। हमें उम्मीद है हमारी पसंद आप जरूर एक्सेप्ट करेंगे। मैं हूं इस कार्यक्रम में आपका मेजबान रमेश मराठा।

हम हैं यहाँ मुसाफिर, चलते हैं बेदर्द मौसम में अपनी अपनी मंजिल की तलाश है। शायद कभी मील के पत्थर को छूते और तुम्हारी मांग में सिंदूर भी भरते, तुम शरीक सफर बन पाते, पर यह राहें हैं दुश्वार और पथरीले, इन पगडंडियों में फिसलन है। और अब ये रास्ते गीले हो चुके हैं।

फिर से जब तुम लौट आओगे हमारी दुनिया में, ये हवाएं फिजाएं इन कपकपाती धड़कनों को हम संभाल लेंगे। यरकानी पत्तों के इस मौसम में अपनी मखमली दुआओं से बज़्म इलाही में शायद हमारी इल्तिजा, हमारी फरियाद सुनी जाए। हमने ये भी सुना है रब यही बसता है और उसकी रहमत का कोई हिसाब नहीं।

रहती पास पास, होती साथ साथ, शायद फुर्सत में हम तुम्हें चाहते, पर काश फुर्सत होती, दीवानेपन की हदों को दरकिनार कर ऐसा ख्वाब अपनी आंखों में बसाने से क्या हासिल, जिस ख्वाब की ताबीर न हो। मिला तुमसे जो भी वो खामोश पानी की लकीरें जैसे ही है।

सरसराहट, रुखसार पे मुस्कुराहट, अन सुलझे सवालात, शब रोज ख्वाबों में दस्तक देना, पथरीले रास्तों को हरा कर मुझे मेरे भटकाव से मुक्त करना, यही तेरा एहसान था, तुम्हारा करम, तुम्हारी नवाजिश थी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से हर दिन रात के 9 बजे तक रहते हैं। जो कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाते हैं, हमें बहुत खुशी है कि हमारे श्रोता, खास करके जो अम्बाला के श्रोता है, वो हमें अपना फीडबैक भेजते हैं, अपने सुझाव भी भेजते हैं, और हमारी टीम उन सुझावों पर काम करती है और कोशिश करते हैं कि हम वही प्रसारित करें जो रखती हो आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा, और आज के लिए बस इतना ही। हमारी स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:05। तो आसमां पर टिमटिमाने लगे हैं और हमारी आज की इस महफिल का वक्त पूरा भी हो चुका है। रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आपका हूं मैं, रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी। आज 17 अगस्त है और बातों बातों में दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। संगीत के सुरीले नगमों और देश दुनिया की चटपटी खबरों से सजा हमारा आज का ये ज्ञानवर्धक सफर अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है, और वक्त है आज के लिए विराम लेने का। पर उससे पहले श्रोताओं, चलते चलते आज की तारीख 17 अगस्त 2026 की कुछ बेहद खास बातों का भी जिक्र करें। और आज का ये दिन धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। पहला, आज नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया गया। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज ही के दिन नाग पंचमी का पवित्र त्योहार पूरे भक्ति भाव से मनाया जाता है। दूसरा, सावन का सोमवार। आज का दिन इसलिए भी अत्यंत मंगलकारी रहा क्योंकि आज सावन का सोमवार और नाग पंचमी का अद्भुत संयोग बना, जो भगवान शिव और नाग देवता के पूजन करते हैं उनके लिए आज विशेष फलदायी माना जाता है। हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं का, हमारे देशवासियों का उद्धार करें और खुश रखें। तीसरा, अब अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं। इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज का दिन 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से वहां के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि आज का ये विशेष दिन आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आया होगा। अब वक्त है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के ट्रांसमीटर को विश्राम देने का। जी हां दोस्तों, पर जाने से पहले वितस्ता की पावन लहरों को समर्पित ये पंक्तियां, और साथ में आप सभी को समर्पित ये पंक्तियां जो रोज मैं लेके आता हूं। वितस्ता की लहरों सा बहे ये गीतों का कारवां, वितस्ता की लहरों सा बहे ये गीतों का कारवां, वितस्ता की धुन पर महके खुशियों का आसमां। आज की रात ढले सुकून की छाओं में आपकी, आज की रात ढले सुकून की छाओं में आपकी, कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर लेकर नई सुबह की दास्तां। जी हां दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर लेकर फिर सुबह की नई दास्तां। यह था आज का विषय और आज की पंक्तियां, और आपको जल्दी से बताता हूं कल के कार्यक्रमों का विवरण। कल 18 अगस्त 2026 मंगलवार को हमारी सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर। वंदे मातरम से हम करेंगे शुरुआत, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत आप सुनेंगे। 7:05 पर घर परिवार कार्यक्रम होता है। 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय। कल होगा एपिसोड 12 और शीर्षक होगा सोच का फर्क, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 मां अनमोल एपिसोड 2 होगा और पेश करेंगे भारत सोपोरी। और 10:00 होगा काव्य गोष्ठी, हमारे साथ होंगी जोबन चीना। ये कार्यक्रम पंजाबी में होगा क्योंकि ये पंजाबी कवित्री है, तो इनसे बात करेंगे आरजे सेजल। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6:00 भक्ति संगीत और 6:30 शाम में गजल। 7:00 रेट्रो हिट्स कार्यक्रम होगा, शीर्षक होगा रात, पेश करेंगे आरजे किरणी। और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा, और कल की कड़ी है आबशार। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का, और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010।
नंबर एक बार फिर 7056413010। जो ये सारी जानकारी मैं आप तक लेके आया, इसको कंपाइल किया था हमारे अन्नू ने, जो हमारे यहां पर कैजुअल अनाउंसर है और कंटेंट क्रिएटर है। रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज की पूरी टीम और अपने दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखें और सुनते रहें एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। तो कल सुबह तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।